0: बेचना जो है, ताकि वो अपनी इस मिस्कीनी से निकल जाए, उसे बेच दे। ये प्लाट किस लिए खरीदते हैं आम तौर पे, या जेवर किस लिए होता है सोना जो है? इससे पहले किसी ने सवाल किया था, मेरे घर में सोना रखा हुआ है बच्चों को शादी के लिए, लेकिन अब ज़रूरत पड़ गई है, क्या मैं ज़कात ले सकता हूँ? भाई आपके घर में सोना किसी रखा है? मुश्किल वक्त है तो मुश्किल वक्त आया है, उसे बेचो और अपनी ज़रूरत पूरी करो। और ज़मीन इसलिए आपने खरीदा, आपको ज़रूरत पूरी हो, ज़मीन को बेचो और अपनी ज़रूरत पूरी करो। लेकिन अगर जैसे कि साहिल का सवाल है, बिकती नहीं है, इस एतबार से अगर नहीं बिकती है कि किसी दूर दराज जगह पर है, कोई ख़रीदने वाला नहीं है, या उसकी कीमत जो है कोई शख्स इसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उसके आधी कीमत से भी कम देना चाहता है, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर वो करोड़ों की ज़मीन है और वो ख़ुद लालच में बैठा हुआ है कि जब तक आजकल मार्केट नहीं, जैसे कहते हैं कोरोना की वजह से मार्केट नहीं है ये, और वो उसकी कीमत नहीं, वो जैसे मुझे चाहिए वो नहीं बेचना चाहिए, तो गलत है। आप उसे बेचें,
1: उसको रेंट मिलता है तो 50 लाख पर ज़कात नहीं है। रेंट जो आपको मिलता है वो भी जो बचेगा, आपको जो 50,000 या लाख या 5 जितनी भी आपको वो किराए मिला है, रेंट मिला है, आप उसको अपने पास रखते हैं, कुछ उसमें इस्तेमाल भी करते हैं। जब आपकी ज़कात की कैलकुलेशन का वक्त आ जाता है, अदायगी का वक्त आ जाता है, आप देखें आपके पास कितना पैसा है, उसमें ये रेंट का पैसे भी जाहिर शामिल होगा, तब आप एक वक्त में ज़कात दे दें। तो बिल्डिंग पर ज़कात नहीं है, वल्लाह अलम। ये जो बता रहा हूँ आपको ना, आसानी वरना फ़र्ज़ तो ये हर साल में आप अलग अलग पैसे, जिस पर साल हो उस पर अलग अलग ज़कात दें। सैलरी में जो मिलती है हर महीने की, या तो अलग ज़कात दूँ या साल में एक दिन मुतय्यन जिसे मैंने ज़कात देनी है सबके एक वक्त में दे दूँ। आसान क्या है, ये दूसरा तरीका आसान है। उसके लिए यह फ़ायदा होगा आपको कि वो सैलरी जो आपने अभी तक ली उसके अपने एडवांस में ज़कात दे दी पूरे साल में, और कुछ ऐसी जिसका मिल चुका आपने ज़कात उसकी दे दी है, तो पूरे साल की ज़कात आपने निकाल ली है। रेंट का भी ऐसा ही है, या तो हर महीने आप अलग अलग रेंट दें, फिर इस बिल्डिंग का अलग देंगे आप ज़कात, उस बिल्डिंग की अलग देंगे, जो सैलरी तनख्वाह उसके अलग ज़कात देंगे, कहाँ कैलकुलेशन करते रहेंगे आप। तो आसान तरीका ये है कि आपने जो आपका वक्त मुकर्रर है ज़कात निकालने का, और वक्त मुकर्रर कौन सा होता है, रमज़ान है? नहीं, वक्त मुकर्रर क्या है, जब आपका निसाब पूरा हो जाता है, निसाब ज़कात जब 595 ग्राम चांदी के बराबर आपका पैसा रियाल रुपया पहुँच जाता है, आप तारीख लिख लें, आज क्या तारीख है, 16 रमज़ान है, आज की वक्त 585 ग्राम चांदी कहाँ से पता चलेगा? मार्केट में जाएं, गोल्ड मार्केट में चांदी के 1 ग्राम की कीमत पता लगाएं, कितने का है, मिसाल को 3 रियाल के, मिसाल के तौर पे, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, 3 रियाल नहीं है, 3 रियाल है, क्या करेंगे आप, 3 को ज़र्ब देंगे 595, कितनी बनता है, कैलकुलेशन वाले कहाँ हैं, 1500, 16, 17 बनते हैं, 1700, 1700 वो किधर है हमारे हिसाब वाले रोज़, हाँ अच्छा यार 17 कर ले, 18 कर ले, कितने बने, 1800 रियाल, 1800 रियाल आपकी जेब में पहुंच गया है। कागज पेंसिल उठाएं, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप पहला क्या है, पहला स्टेप क्या था, हाँ निसाब का पूरा होना, निसाब का पूरा होना, कैसे पता, 595 ये सुन्नत से साबित है, आपकी जेब में 595 ग्राम के बराबर कैसे पता चलेगा, स्टेप 2 क्या करेंगे आप, मार्केट में जाएंगे, आज के रेट का 1 ग्राम कितने का है चांदी का, मिसाल के तौर पे 3 रियाल का है, ठीक है ना, अब क्या करेंगे 595 को ज़र्ब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो फिगर निकलेगी तकरीबन 1800 निकलता है। स्टेप 3 आपने लिखना है डायरी पे, मोबाइल पे, कहीं पे लिखें, तारीख पहले लिखें, 16 रमज़ान 1439 जो आज की डेट है, और लिखें कि 1800 रियाल, और साथ आगे नोट लिखें ज़कात का निसाब पूरा हो गया। अगले साल 16 रमज़ान 1440 आप देखें आपकी जेब में कितना पैसा है, अगर 1800 से ज़्यादा है ज़कात फ़र्ज़ है, उससे कम है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ये ज़कात के तरीके हैं कैसे ज़कात निकाली जाती है। अब आपके पास जेब में पैसा भी है, बैंक में पैसा भी पड़ा है, रेंट भी है उसे पैसा भी आता है, आपकी सैलरी भी है वो अभी आपकी मिलती है, इन सब को आपने कैलकुलेट करना है, जमा करना है और देखना है 1800 से ज़्यादा है या कम है। पहली शर्त यह कि 1800 पूरा होना है, अगर 1800 पूरा नहीं हुआ आपको सैलरी मिली खर्च हो गई, ठीक है ना, आपको रेंट मिला वो भी लगा दिया,